संत सूर्य मोह पक्का।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे अशांत मलेर मार पाए अशांत

ਕਮਲ ਸੁਵੇਲਾ ਭਗਤ ਕਮਲ।

मर्दान समुद्र शास्त्रता अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

ਅੱਖਣ ਜੋਰ ਸੁਪੈ ਮੈਂ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ।

जब आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी।

इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्यां दरनाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनु गावन से मैं चेतना आवन

जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पातशाहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आ

तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चूज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुझी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै तुझी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु समृत सासत जी कर करिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई, अमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चर नन मन रहे हमारा।

सेवक सेख्य हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निबरे। पूजो सदा हमारे पक्षा, श्रियस तुझ जू कर हो रक्षा। राख लिहो मुहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी

कट कट की पटपट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै,

जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सुमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभो आद जुगाद स्वरूप स्वयं पहो अवरिच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो त गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह

तिसका होए उदारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिया

तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पाओ जल बिखम उसगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं इहु पुन गुण गोबिंद गाहे। सब सैनू कृपाल सुमाले साहे साहे मिर्था कोई न जाए जे आवे तो दया है।

पूर्ण ब्रह्म सतगुरु नानक देव, सतगुरु नानक देव, देव देवी सब त्यावे, नाद बाद विस्माद, राग राग गुण गुण गावे, सुन समाद अगाद, साद संगत सपरंपर, अवगत अलख अपेव, अगामित

महाराज कह रहे ने इंज अरदास करया कर। महाराज दी बाणी नूं पावन पंक्तियां नूं अरदास बना के गुरु अर्जन देव जी उस निरंकार दी तुरकी बाणी उच्चारण कर रहे ने, अरदास कर रहे ने। कृपा करो मेरे हिरदे विच तुहाडा वस, कृपा निध बसो हृदय हर नीत। कहिंदे ने बुद्ध मेरा ध्यान ऐसा बन जाए तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत दास तुम्हारे की पावो तूरा। मस्तक ले ले लावो महापद ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। कीर्तन बंदगी है, कीर्तन परमात्मा दी याद बख्शिश दा भंडार है, जिन्हां नूं सुनना ते गाउणा जाए। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी ए पावन अरदास साडे हिरदे विच वी, सच्चे पातशाह मेरे ध्यान विच, मेरी बुद्ध विच, बुद्धि विच ऐसी बख्शिश बना दे कि मेरा ध्यान तुहाडे वल लगा रहे।

ऐसी भावना, ऐसी अरदास महाराज कह रहे ने हैन विरले, कहते ने कोटन में को करोड़ां दे विच ने जेड़े नारायण जे चीत परमात्मा दे चरणा विच उन्हों याद करते ने ते उन्हों अरदास करते ने। मंगदे तां आपां सारा कुछ है, पर दुनिया भी पदार्थ दुनिया भी सुख जरूर मंगने ने, इत्थों ही मंगना है, पर नाल नाल देन वाले नूं भी मंगना। जे पुत्र दी दात मंगी ना, कहंदे ने फिर दात नाल ही नहीं जुड़ जाना, दात विच्चों देन वाले दाते दा शुकर करना। जे घर दी दात, गड्डी दी दात, निक्कियां निक्कियां दातां ने, महाराज कह रहे ने जे दातां मिलियां ने, कुछ ऐसे होंदे ने दात प्यारी विसरिया दाता, देन वाले नूं भुल गए फिर जदों लोड़ पई फिर मंगन लग पए। महाराज कह रहे ने फिर देन वाले नूं दाते नूं दातां विच्चों याद करिए, ते फिर तेरे वेड़े विच रौनकां बरकरार बनियां रहणगियां। पुल चुक दी खिमा सारियां संगतां नूं जी आयां नूं। नानक ना

गए बसन सुहेला, औद घटै दिन सरैनारे, मन गुर मिलका सुवारे राहो। यो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसै जगाए पियावे हो रसक्त कथा तिन जानी। जा को आए सोए बया, जो गुरते मने बसेरा निज

0: सुख मांगे
1: मुख कर संतन की पूरे।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जा मेरा। बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौनी दा वैताए सब थाई होए सहाय। दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। निमाणिया दे मां निताणिया दे ताण मियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह। धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी शब्द गुरु दाता। आप जी के मुबारक चरणा कमलों में अरदास बेनती है महाराज जी। आप जी के पाणी अंदर चार पहर दिन सुखा का बतीत होया अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन दर दे के निहाल किया। रात के दीवाना की संपूर्णता आप जी के सुखासन साहब जी की सेवा सोहला साहब जी की बाणी का जाप किया गया। सेवा करद आप जी के सेवका पासों भुला चुका दिखीमा अपने सेवकों के सब दे कारज रास करियो सदा साज के निवाज के रखियो। सारिया संगतां महाराज जो जो तुहाडे चरणा विच तिल फुल भेटावां लैके हाजिर होईयां सब दियां चोड़ियां भर के भेजना। सेवादार हाजर ने रहना ही है सुखमई बतीत कराउणी। आप जी सचखंड पलंग ते विराजमान हो अमृत वेले फिर दर्शन देना जी। सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੱਬੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 761 ਅਤੇ 62 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਛੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਇਹੀ ਦਾਤ, ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਨ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ 1। ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਹਿ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋਂ, ਸਿਮਰੋਂ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰਿ ਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨਿਕੈ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਦਾਖਰ, ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਅਖਰ, ਕਿਨ ਕਾਇਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ, ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ, ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੂਖ ਜਮ ਨਸੈ,
प्रभ कै सुमिरन काल कर हरै, प्रभ कै सुमिरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सुमिरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दर गहमानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझै, प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ माया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, लोक तीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाद अष्टपदी, जेह मात पिता सुतमीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तीर चलै, जय मुस्कल हो वैत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जे मार्ग जात केला, तै हर नाम संग होत सुवेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही, अनक बिघन जय आय सुंगार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबू न तोवै, हर का नाम कूट पाप खूवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध कै संग, जिह मार के गन जाहे न कोसा, हर का नाम मुआ संग तोसा, जय पैड मंद गुबारा,
हर का नाम संग उजियारा जा पंथ तेरा को न सियानु हर का नाम तै नाल पछानु जय महाप्यानु तपत बोकामु तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिखा मन तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत बर कह भगत जना की बरत नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कह नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मातु हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दानु मंथन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक दीना हर धन जन कुआ प्रभु दीना हर हर जन कै उठस ताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गामु सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संतरित वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईए नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान घट शास्त्र सिमरत विख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास पीसर थी वै अगन माहे होमत प्राण कनिकसव है वर भूमदान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम मत साधन निमक निमक कर श्री कटावै तो भी होम मैं न जावै हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्भ गुमान न मन ते उठै सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू न बिख्या टरै जल तो वै पोते अनीत शुद्ध का होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पत बहुच बहुत सियान भजम का पव व्यापै अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै एक अनेक गन्ने बुझै कोट पाव दर गहने चीजे छूट सुनायु पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जी को मांगे साध जना की सेवा लागै जी को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जी को अपनी शोभा लोरै सा संगे हो मैं छोरै जे को जन्म मरण ते डरै सा जिन की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल दासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान आप इसको जो जाने नीचा सू गणिये सब ते उच्चा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम तिन खट खट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पिख है सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप नहीं लिपा निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटाको देवो दान
करण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गतमित जान हूँ वापे अपन संगा प्रभराते तुमरी उस्त तुम ते हो ए नानक वर्ण जानस कोई सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन सुन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया दृष्टि तरक नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत भरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुआर सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भयाओ पर साक्षैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले तो नानक सीजे ये प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै ये प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला ये प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करनी तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दोग मूडंद व्यापे नान काढ़ लिहु प्रव्यापे आद अंत जो रखन हार तिस्यों प्रीत न करे गुवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा जूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टैल पावै दर गै मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदायो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मन है जो होवन सो दूर परान है छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन ले पुतारै तो हे गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पदत बिकराल नानक काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर बेकंतर मल माया छपस नाही कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान मंत्र व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पाथर कैसी तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसी मार्ग पावै कर गै लिहोड़ निभावै कहां बुझारत बूझै डूरा निष्कहियै तो समझै पूरा कहां विष्णु पद गावै गुंग जितन करै तो भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हां उस भवन करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआ वैना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अनंत कील माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम तय अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गतमित तुम्हें जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छूड़ कै लागह आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदि दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु कहा करे निष्ठा कुरस्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा
जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगणत साहू अपनी देरास, खात पीत बरतैन दूलास। अपनी अमान कछ बहुर साहू ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्ति से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मन मत है। उसते चौगुण करे निहार, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक बात माया के हित, सर पर होत जान अनित। बिर की छाया सो रंग लावे, को बिन सहो मन पछतावे। जोधी सहसो चालनहार, लपट रहो ते अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेही, ताकू हाथ नया वै की। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया, मिथ्या हम मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस्तु बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमानु, मिथ्या आप सुपर करत गुमानु। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रहे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपात, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथि साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कै दुर्गंध। बिन सिमर

प्रभु जाता नान कुन जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपह मन आपह आप करत नबेरा। किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा पाप सियान सगल ते रहत। सब कर जाने आत्म की रहत जिस भावित चले लड़ लाए थान तनंतर रहा सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंगमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याहि सदा मणि अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याहिय ध्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कथ वर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस का विजय। जे प्रसाद तु सब को मान है मुक्ता को चस रसन बखान है। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गय मान पावे नानक पद सेती कर जावे। ये प्रसाद अरो कंचन देही लिव लाओ तिस राम स्नेही। ये प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जी प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे। ये प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करेहि। ये प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। ये प्रसाद शुभ हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। ये प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सह त्याई। तिसह त्याई जो एक अलकै इहां उहां नानक तेरी रखै। ये प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी। ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। ये प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। ये प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहे। ये प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद भिखे विस्माद। ये प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। ये प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले। ये प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता शिवराच। जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न गसै मन सोए प्रभु दया ते मतूतम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपु कछु न किनु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानकिन कह कछु नाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साधना की चर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुखु जल होत साध संग मन सगली खोत। साध के संग मिटै अभिमानु साध के संग प्रगटै सुज्ञानु। साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन।

साध की महिमा वरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माही समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग नकत हुतावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैरु, साध के संग न भीगा पैरु, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही होता, साध के संग तजै सब आप आपे जाने, साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कब हूता वै, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग वस्त गोचर लै, साधु कै संग जर सह, साधु कै संग साधु कै संग जर सह, साध के संग वसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधु के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायनु, साध संग अमृत गुण गायनु, साध के संग श्रव थान गामु, नानक साध के संग सफल जनामु, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेट तोत निहाल, साध के संग कलोकत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उतरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाने, जीता सुने तीता बख्याने, साध की उपमा थे गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सुधा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेक एक स्विन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय, अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल भवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा को खोते को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह स्वभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगासु, जैसे तारु परि आकाशु, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समानु, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना, तम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
ब्रह्म ज्ञानी कह गरीब भीष्मा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जिकुत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक पुर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, परतर रूप न पिख है नेत्र, साध की टैल संसंग हेत करना सुने, काहू के निंदा सब थे जाने आप उसको मंदा, गुर प्रसाद विखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा पर सो बैसुन सोचि सुपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म कर तो हुए निकर्म, तिस बैसुनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भक्त कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ नाम जपावे, नानक वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासु पापा मलक हुए, दिस भगवती की मत उत्तम हुए, भगवंत की टैल करे नित नीत, मन तनि अर्पय विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सोदय, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपांतर उतारे, पशुप्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रो मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तय न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, ताज दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूची भरे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुख सुख आवे,
तैसा हर्क तैसा सोग सुदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म की सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन आओ आपे करण करावण जो प्रभावे सोई फुन हो असुर आप अंत तिरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रभास पार ब्रह्म करता विना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भई निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जानंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहु विधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट हुका विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिघातम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जी जिद लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र वृक्ष ने पचाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट गिये चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वरम थीवे कई कोट जकिनर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नेरै सबूते दूर नानका फलक त्रया भरपूर कई कोट पादाल के वासी कई कोट नरक सुख निवासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बो जोनी फिरे कई कोट बैठ ती काए कई कोट काल है तक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राके नानक सब किस प्रभु कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम सतिन लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिन को मिल्यो प्रभु विनाश कई कोट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार फसलो पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने भोपाल प्रभते हुए प्रमाश माता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो तातम प्रगास कई कोट तत् के बेती सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सा सा समारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नान तिस बलिहार नै जल थल मैयल सोय अष्टपति करण करावन करण जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं ताप तापन हार अंत नहीं किछ पार अवार हुक्मे तार तर रहावै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पथ सुधारै आप करै अपन विचारै तू असुरियां का स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो भावै सुकार करावै नानक दृष्टि वरन आवै को मानुक ते क्या हो आवै जो पावै सुई करावै इसके हाथ विता सब किच ले जो भावै सुई करे अनजान लिखिया में रचै जी जानता अपना बचै पर में भूला दै दिस्तावै निमक माहे चार कुंट फिरियावै कर कृपा जिस अपनी पग दे नानक ते जन ना मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म करीब नवा जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै जा को अपनी करे बख्शीशता का लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश
अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही साथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योत स्वभाव है सोई पुन थियो कबू उच नीच में बसे कबू सो भार करंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास दयाल कबू बिता ब्रह्म विचार नानका मिला वनार कबू निर्त करे वोपात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू फेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला का आवे ज्यो प्रभरा खेते हुए रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू चढ़ती स्नान कबू सिर साधक ज्ञान कबू कीट पतंग हस्त पतंग हुए जी यानक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावे तिवे निचावे ज्यो त्रिभावे सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू सात संगत उपावे उस शांति भव न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नावृत्ति करांग सदा बसे पार ब्रह्म के सांग जो जल में जले आए खटाना थे ज्योति संग जो समाना मिट गए गौण पाए विश्राम नानक प्रभु का सद कुर्बान श्लोक सुखी वसे मस्कीनी आए आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारी आ नानक गर्भ गले अष्टपरी जिसके अंतराज विमानु सो नरक पाती होवत स्वानु जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म मरे भोजन परमावे तन पुम का जो करे गुमान सो मूर्खंता ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बिसावे नानकी यहाँ मुक्ता गए सुख पावे धनवंता हुई कर गुरभावे तिन समान का संग न जावे बोलस कर मानु को भर कर आस पल पीतर ताका हुई विनाश सब थे आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी तर बराय करी कुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान उसो जन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे अवतारी श्रम पावे सगले बिरतारे निक तपस्या करे अहंकार नर स्वरूप फिर अवतारण के जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तुसे भलाए निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछुए तब इसको सुख नाही कोई जा पे जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब धारे को बैरी मी तब लगने चलना ही चीत जब लग मुह मगन संग माई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा थे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लग कूटता वै तृप्त नयावै माया पाछे पावे अनक भोग बिकिया के करे न तृप्ता वै कब कमरै बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बृते सब का जय नाम रंग सर्व सुखो बड़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जो किसकिन सु अपने रंग सब ते दो सबु कै संग बूझे देखे करे विवेका पह का पहन एक मरण बिन से आवे न जाए नान सदी रहा समाये आप दिशे समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप किनु अपन विस्तार सब कचुकाओ करने हाथ उसते बिन कहो कि जो इतान तनंतर एक कैसोए अपने चलताव करने हार कौतक रंग आपार मन में अमन अपने माए नान कीमत कह न जाए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने वकिया नी सच सच सत सब किन्ना कोट मदे किन्ने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप हुआ सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कर सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप है नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर है सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हुए मलिन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन तान प्रष्ट हुए
संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक बेहतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं चलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ताव को नाहि नानक संत पावै तो फिगत पाए संत खंड गमाए तताई संत खंड खिंडिक न पाई संत का निंदक माथ आरा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नान संत पावे तुस्का पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख तिटर है संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे था ले मिलाए संत का दुखी अद बिस्ते टूटे संत का दुखी किथे काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर तिथोता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच ना है अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी गवरना रखन हारु नान संत पावे तां ले उबारु संत का दुखी ओं बिललाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पावक इंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे केला ज्यो बुआड़ तिलखी तुमाही दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत कृत निंदक अतुर ही भया नानक ज्योत सुभावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजय न आसा संत का दुखी उचलै निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पै कृत न मिठे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट दिसक्यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सत करो दिन रात सत्याहु सास गिरास सब कुछ वर्त तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़भागी नानक जन से रोग तजो सियान सोचनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख भरम पो जाए पदी मान की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अघाए भव न तृष्ण लग आए मारे रखे कुआ मानु के कुछ नाही हाथ जिसका हुक्म सुख होए जिसका नाम रखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई स्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर नानक दर गह उजल मथा हर दर गह नानक उजल मथा बटपा की तेजन जगमाए सदा सुधार के गुण गाये राम नाम जो करै विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा जानू सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सूझी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपना आप सुजै तिसकी जानू तृष्णा बुझै सात संग हर हर जस कहत सर्व रूप त्योहर रहत अंजन कीर्तन केवल बखियान कृष्ण में सोई निर्वाण एक ऊपर जिजन किया साथ इसकी कटी है जमकी फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रमन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस पर भी अपना कृपा करे सो सेव को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सब उजिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सुकम सोई असूल न किछ जन्मै न किछ मरै अपन चलता पी करै उन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आपने जूत रचता प्रताप बनासी नाही किछ कांड धारण तारे हो ब्रह्मंडल कपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सुशोभावंत सगल संसार उतरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब छपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागै
ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਸੈ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਇ ਸਮਾਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹੂੰ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਿਰਥਾ ਜਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਵਨ ਉਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਸੁਪਦੀ ਟੁੱਟੀ ਕਾਂਡ ਨਹਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੁਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾ ਬਵਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਉਪਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਤਿਸ ਬਿਨਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਵ ਹੈ ਜਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਦੀਐ ਦਰਬੈ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਾਣੈ ਗਾ ਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਚਣ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੈ ਅਸਤੰਭਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਚੜਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾ ਜਿਉ ਮਾਉ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਲੋਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਧਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਭੂਲਾ ਗਾਏ ਫਿਰੇ ਅਚਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੀਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੇ ਰਥੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜ ਬਾਲੇ ਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ ਲਾਦ ਕੇ ਸੁਲਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਕਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕੈ ਸਭ ਕੋਇ ਮੁਕੁਜਲ ਹਰ ਤਰ ਗੈ ਸੋਇਓ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਇ ਤੁਰ ਪਈਓ ਅਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧਗੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਿਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਅਨਕ ਵੇਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਖੈ ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕੇ ਤਿਸ ਕਹੋ ਕਰਨੈ ਜੋ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸੁਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਕੈ ਤੋ ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਜਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾਰੇਕ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਵਜਾਹੇ ਨਾਨਕਾ ਜਸੋ ਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਭ੍ਰਮਨ ਮੈ ਰਾਖ ਮਾਨੋ ਕੀ ਤੁਪਰੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰ ਨਾਹਿ ਕਿਛ ਕੋਈ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਇ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਤਾਨਾ ਕੈਰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਹੀ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹੋ ਅਨੁਰਾਓ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ ਗਾਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਹੋਰ ਜਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਨਦ ਰੂ ਮੰਗਲ ਸੱਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਥਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਬਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਿਨੈਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਿਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਭੂ ਸਗਲ ਪ੍ਰੋਈ ਆਪਣੈ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈ ਸੀ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਿਨਾ ਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦਗੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲ ਕਰੇ ਕਿਨ ਵਾਹੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਵਟਾਏ ਨਾਨਾ ਵਿਚ ਗਰਬੰਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਦਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਓ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲਾਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੀ ਪਤ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
रूप सत जाकर सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की वाणी सतगुरु समाय समानी सतकर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वा सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दय प्रवे सत मृत पूजा जे कोई नाम जबरता की गत होए आप सत किया सब सतु आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सरसो करने हार वर्ण भूज करत विचार करते कि मित न जाने किया नान जो भावे सोई वर्ती सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझे तिसाया स्वादु प्रभ के रंग राज रही गुर के वचन पदार्थ लहे विदाते दुख काटन हार जा के संग तर संसार जन का सेव सो वागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टवदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार गुसा सब हुए नान सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप जिन सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछाण्या जा हृदय विश्वास प्रभु आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पै ते निरपो हुए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे सुमाना बस्त माही ले बस्त गढ़ाई ताको पिन्ना कहना जाए बुझे बुझ नार विवेक नारायण मिल नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालनहारा सेवक की रख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु थार है नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा टाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उच्चे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है असम करे लश्कर कूट लख है जिसका सास न काट ताप ताकू राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पात तिसके करत फिरते जात मारन राखे अवर न कोई सर्व जिया का रखा सोए काही सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबलक विडाणी बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नामो धन नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रजो जंतर बतानी मंत्र नाम है नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह शुभ काम बोलो जे बात न रात प्रभ अपने जन की नीतात करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह न जानो आठ पैर प्रभ सह हजूरे कौ नानु सही जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व दुखा दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिस कह दर स्वभाव मिटावे अवर सियानप सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिखु धरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतिपाल
सेवक गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख वट भागी हे, सतगुर सिक्का हलत पल सवारै, नानक सतगुर सिक्को जी नाल संवारै, गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बिचै सतगुर के पास, ति सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा से आप करे, नानक सो सेवक की मतले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परमु, सह से आन पलया ना जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी भाइये, सफल दर्शन फेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन आघानी, मन संतोखातम पतियानी, पूरा गुरख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट भिखै हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए, जे बाय कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंचर प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन्ह न पाई, अनिक भगत बंधन नित करहै, चरण कमल हृदय सिमरहै, सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यो रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुर का ना ही कदे विनाश, जा के मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मुँह माया कै संग न ले, पो मन मेरा कै हर हर एक, अंधकार दीपक परगा से, नानक पर मुँह दुख तहते न से, तप्त माय ठाठ वरताई, अनंत भया दुख नाठी पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाओ चुका निरपोहे बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातिन कृपा तारी, सासु जप नाम मरारी, थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हज श्रवण, निर्गुणाप सरगुण पियोही, कलातार जिन सगली मोही, अपने चल प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनिक बार नानक बलिहारी, श्लोक सात न चालै बिन भजन, बिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक धन सार उष्ट परी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरूपाव समीत विसारू, चरण कमल हृदय में उतारू, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर कहो नाम हरवथ, इहो तन संचो हुवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहि, जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर औखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दर गै परवान, मन प्रबुद्ध हर कह नाई,
धैर्य स्थावता बैठाए, ताको बिघ्न न लागे कोए, जाके हृदय बस हर सोए, कलता ती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होयास, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे विनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी, तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गुण मिटै प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमरन हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक पाव न छूटन हारे, सिमृत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तुम क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्तारु, इनते कहो कवन छुटकारु, असस्थिरत सुवारी झूठा डम झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले यानी, भगत बिना बोडू बेस्यानी, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारु चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विक जाहे, आप जपोरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत कत पाओ, सार को सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ, गुण गाओ तेरी उत्तर समैल, बिन सुजाए ओम मैं विक फैल, होए चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सर नाम संभाल, छाड़ सियान सगली मना, साध संग पावे सच तना, हर कुंजी संच करो बिहार, यहाँ सुख धर गय जयकार, सर्व यंत्र एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला, एक सिमर एको मन आए, कसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे हो प्रभ आप, अनेक विस्तार एक थे भय, एक आराध प्राचित गए मंथन अंतर, एक प्रभुराता गुरु प्रसाद, नानक के जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभे आया, पर या तो शरण आए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति ला इष्टपति, जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देव हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं, सास सास प्रभु तुम्हें त्याऊं, चरण कमल से लागे अप्रीत, भक्त करूं प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्टि मां सुख होए, हरस पावे बिरला कोई, जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे, चाओ साध कह संग सरे, परे सरनान सब त्याग, अंतर प्रगास अंतिल विलाग, बड़भागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु हो दयाल, सेवक किन्नो सदा निहाल, बंधन खाट मुक जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जे सब किस्तिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद गुबर लाला कै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा काढ़ै, गुरु पूरै तथे है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एक मान त्यग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो, भगत पाए करिए संसार, बिन भगति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुख नित नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल थूका हो तनाश, नानक नाम जपो गुणदास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो, मन तने अंतर ही सुहाओ, नित रूपेक दर सुख होए, मन बिकसै साथ चरण तोहे, भगत जना कै मंत्र रंग, बिरला को पावे संग, एक बसदी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए,
ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਚਨ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਹੇ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ ਵੋ ਭੋਜਨ ਕਾਪੁਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੁਭ ਪਾਤਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ

फिर जाप अष्टपदि जब कार्य कछ न दृष्टिता पाप तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपने आपा पार ब्रह्म तब वो काक सोवत परमो अपन केला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब मंद मुक्त कौ किस को गनी जब एक हरगम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभ से सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडारू कवन कत डरे अपन चलता करने हार नानक ठाकुर गम भार अविनाशी सुख अपने आसन ते जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तूता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत कौ कीश जय जो स्वरूपी जो संसमावे तय किसे भूख कवन तृप्तावै करण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी सुख अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पैपरवीन तय वेद कतेव का कुचीन जब अपने आप

तै कौन ठाकुर कौन कही है चीरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार नानक अपनी गत जानू आप।

परवेश। जय कैकेयी भगवंता, सह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय अपन आपा पतियारा, सह कौन कथै कौन सुन नैहारा। बहु बेअंतु ते उचा, नानक आपस को आपह पहुँचा। जय आप रचियो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप पुण तै पही कावत, को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह भरम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तू नानक कै। जय अभिगत भगत है आप, जय

जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन त नाम जपू लिवलाही, दुख दर्द मन ते हो जाए। सच व्यापार करू व्यापारी, दरगह निबह केव तुम्हारी, एका टेक रखू मन माही, नानक बहुर नया बह जाए।

करन करावन हार प्रजाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एकंकार, अनिक कला लखी न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर, अंतर गज से आप जनाई, नानक तिस जन आप बुझाई, सर्वभूता अवतारा, सर्व नैना पेखनहारा, सगल समगरी जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सबके मत लिप्तो रह, जो किछ कहना सुआपे कह, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इस्ते हुए सुना ही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप लाकर तू तत्निकी, आपे जाने अपने जी की, आप साज धारी सब साच, पूत पूत अपन संग्राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक केहु जान, जो जाने तिस दा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया, जन आवन कहे है सुहाओ, जन कह संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

पाया पूरे के गुण गावोष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंद आस नित्या गुत्रांग संजना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सास गगन सागर तरह हर तन के पर ले भंडारो नानु गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद सा संपज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो

सफल जीवन सफलता का सांगू, जाके मन लाका रंगू, जय जय शब्द नाहत वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए। मिटगे बैर भय सबरे, नम्रत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होय सेवक की सेव। हाल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रचना कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुनाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोय, सब त्यूच पाए स्थान, बहुर न होए आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम सांत रिद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्व थे सिद्ध, विद्या तब जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रदास, सब कहमत सगल के उदास, सुंदर चतुर्थत का वेता, सुंदर शीत दृष्टिता, हे फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहु निदान जपै मन कोई, सब जुग महता की गत होई।

राम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट परासा संग मिटे संत कृपा ते छमते छुट्टे झाके मस्त कर्म प्रभाए सा शरण नानक ते आए जिस

तत्काल उधार है। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पह परमु, साध नाम निर्मलता के कर्म। सबते उच्चता

सुखमनि सुखमनि सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी।

दत्त दान जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाउ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वेण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला।

वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वाखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण। थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई, जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव साला ही क्यों वरने केव जाना, नानक आखण सब को आखे एक दो एक सियाणा। वटा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै, नानक जी को आपौ जाने अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कते बा असलो एक तात, लिखा होए ता लिखी है लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप, साला ही साला है एती सुरत ना पाईया। नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिए है, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन। कीड़े तुल न होवने जेत मन होना विसरा है, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करना देन न अंत। अंत ना वेखण सुनण न अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वड ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता, तिल ना तमाए केते मंगै जोध अपार। केते आ गणत नहीं विचार, केते खप तुटै वेकार। केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे। केतियां दुख भूख सद मार, ए ते दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे आख है से पे के ही के। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारी अमुल भंडार। अमुल आव है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े कर है वख्याण। आख है बर में आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद। आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे ता आख न सका है केई के। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आख है बोल बिगाड़, ता लिखी है सिर गावार गावार। सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद। अनेक असंखा केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे। गावै तुहनो पौन पाणी बैसंत्र, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै है चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारी। गावै है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गावै है इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले। गावै है सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी, गावै है वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगामा छपायाले। गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खाणी चारे।
गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तहारे सही तुदनो गावह जो तुद पावन। रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन, से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारी। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करहै बेफूत खिंथा काल। कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जापी रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावह, लेखे आवै पाद। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। हो वेखै ऊना नदर ना आवै, बहुता एहो विडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजन हार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एक दूजी भौ लख हो है, लख हो वै लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। केत राहे पत पवड़ियां जड़ी होए अकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। राती रुती थेती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखहो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद बिनोद कूड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गला कथिया न जाहे, जे को कहे पिछे पशुताए। तिथे घड़िए सुरत मत मान बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध।
ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਤ ਢਾਲ।

जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं शपै छंद त्वा प्रसाद, चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित ओज केहि। जय कोट इंद्र इंद्राण साहु साहान गणि, जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिण कहत, त्वा सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अनामंग, नमस्तंग अतहमंग, नमस्तंग अजीते, नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग अटाहे, नमस्तंग अनिले, नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अशेदे, नमस्तंग अगादे, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सो एक, नमस्तंग अनेक, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निर्कर्मे, नमस्तंग निर्परमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निर्भेषे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकहते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग तिरमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग आगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तिरवर्गे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्ये, नमस्तस्तरम्ये, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निर्तहमे, नमस्तंग निर्बामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्तदेव, नमस्तंग अपेवे, नमस्तंग अजनमे, नमस्तंग सुबनमे, नमो सर्वगौने, नमो सर्वपौने, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वभंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्तदयाले, नमस्तंग अपर्णे, नमस्तंग अमरणे, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतंदे, नमो सत अबंदे, नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्बाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्तरागे, नमस्तंग सोहागे, नमो सर्वशोखं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले। चाचरी छंद त्वा प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाग है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निरलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ती निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने,
నమో నృత నృతే నమో నాద నాదే నమో పాన పానే నమో బాద బాదే అనంగీ అనామే త్రిపంగీ త్రికామే అనంగీ అనామే సమస్తి స్వరూపే ప్రపంగీ ప్రమాతే సమస్తి బిభూతే కలంకం బినా నే కలంకి స్వరూపే నమో రాజ రజవేశ్వరం పరమ రూపే నమో జ్యోగ జ్యోగవేశ్వరం పరమ సిద్ధే నమో రాజ రజవేశ్వరం పరమ వృద్ధే నమో శస్త్రపాణే నమో అస్త్రమాణే నమో పరమ జ్ఞాత నమో లోకమాత అపేఖీయ పరమే అపోగీయ పుగతే నమో జ్యోగ జ్యోగవేశ్వరం పరమ జుగతే నమో నిత నారాయణే క్రూర కర్మే నమో ప్రేత అప్రేత దేవే సుతర్మే నమో రోగ హర్త నమో రాగ రూపే నమో సాసాహం నమో భూప భూపే నమో దాన దానే నమో మాన మానే నమో రోగ రోగే నమస్తం స్నానం నమో మంత్ర మంత్రం నమో యంత్ర యంత్రం నమో ఇష్ట ఇష్టే నమో తంత్ర తంత్రం సదా సచ్చిదానంద సర్వం ప్రణాసీ అనూపే ఆరూపే సమస్తుల్ నివాసీ సదా సిద్ధదా బోధదా బిరుదకర్త అదో ఉరుద అర్ధం అగం ఓగహర్త పరం పరమ పరమేశ్వరం ప్రోషపాలం సదా సర్వదా సిద్ధదాతా దయాళం అషేదీ అపిహిదీ అనామం అకామం సమస్తో పరాజీ సమస్తస్తతహమం తేరా జోర చాచరీ షంద జలే హై థలే హై అపిహిత హై అపే హై ప్రభు హై అజూ హై అదేశ హై అపేశ హై భుజంగ ప్రయాత షంద అగాధే అబాధే అనందీ స్వరూపే నమో సర్వమానే సమస్తి నిధానే నమస్తవం నిర్నాథే నమస్తవం ప్రమాథే నమస్తవం అగంజే నమస్తవం అపంజే నమస్తవం అకాలే నమస్తవం అపాలే నమో సర్వదేశే నమో సర్వపేశే నమో రాజ రాజే నమో సాజ సాజే నమో సాహ సాహే నమో మాహ మాహే నమో గీత గీతే నమో ప్రీత ప్రీతే నమో రోగ రోగే నమో శోక శోకే నమో సర్వరోగే నమో సర్వభోగే నమో సర్వజీతం నమో సర్వపీతం నమో సర్వగయానం నమో పరమకానం నమో సర్వమంత్రం నమో సర్వజంత్రం నమో సర్వదృశ్యం నమో సర్వకృశ్యం నమో సర్వరంగే త్రిభంగీ అనంగే నమో జీవ జీవం నమో బీజ బీజే అఖిజే అభిజే సమస్తం ప్రసిజే కృపాలం స్వరూపే కుకర్మం ప్రణాసీ సదా సర్వదా హృది సిద్ధం నివాసీ చర్పట శాంతవ ప్రసాద అమృత కర్మే అమృత ధర్మే అఖల్ జోగే అచల్ భోగే అచల్ రాజే అటల్ సాజే అఖల్ కర్మం అలఖ కర్మం సర్వం దాత సర్వం జ్ఞాత సర్వం పానే సర్వం మానే సర్వం ప్రాణం సర్వం ప్రాణం సర్వం భుగత సర్వం జీవత సర్వం దేవం సర్వం పేవం సర్వం కాలే సర్వం పాలే రువాల్ షంద్ త్వప్రసాద్ ఆద్ రూప అనాద్ మూర్త అజోన్ పురుక అపార సర్వమాన్ త్రిమాన్ దేవ అపేవ ఆద్ ఉదార్ సర్వపాలక్ సర్వకాలక్ సర్వకో పున్ కాల్ యత్ర తత్ర విరాజహే అవతూత రూప రసాల్ నామ ఠామ్ నా జాత్ జాకర్ రూప రంగ నా రేఖ ఆద్ పురుక ఉదార్ మూర్త అజోన్ ఆద్ అసేఖ దేశ ఔర్ నా పేస్ జాకర్ రూప రేఖ నా రాగ్ యత్ర తత్ర దిశా విశా హోయ్ ఫైల్యో అనురాగ్ నామ కామ బహీన్ పేకత తామ హూ నహ జాహే సర్వమాన్ సర్వత్ర మాన్ సదైవ మాన్ తాహే ఏక మూర్త అనేక దర్శన కీన్ రూప అనేక ఖేల్ ఖేల్ అఖేల్ ఖేలన్ అంత కో ఫిర్ ఏక దేవ పేవ నా జానహి జిహ్ భేద్ ఔర్ కతేవ్ రూప రంగ నా జాత పాత సో జానై కేహ్ జేబ్ తాత మాత నా జాత జాకర్ జనం మరణ బహీన చక్ర బక్ర ఫిరై చతుర్ చక్ మానై పుర తేన్ లోక చౌదహ కే బిఖయ జగ జాప హీ జిహ్ జాప ఆద్ దేవ అనాద్ మూరత థాప్యవ సభయ జిహ్ థాప పరమ రూప పునీత మూరత పూర్ణ పురుఖ అపార సర్వస్వరచ్యో స్వయం భవగణన పంజన హార్ కాలహీన కళా సంయుగత అకాల పురుఖ ఆదేశ ధర్మ తామ సో పరమ రహత అభూత అలఖ అపేష అంగ రాగ నరంగ జాకయ జాత పాత నానామ గర్భ గంజన దోష్ట పంజన ముకత దాయక కామ ఆప రూప అమీక అన ఉసతత ఏక పురుఖ అవతూత గర్భ గంజన సర్వ పంజన ఆద్ రూప అసూత అంగహీన అపంగ అనాతమ ఏక పురుఖ అపార సర్వలాయక సర్వకాయక సర్వకో ప్రతపార సర్వగంత సర్వహంత సర్వతే అనపేఖ సర్వశాస్త్ర న జానహి జిహ్ రూప రంగ అర రేఖ పరమ వేద పురాణ జా కహ నేత పాకత నేత కూట సిమ్రత పురాణ శాస్త్ర నా ఆవహి వహ చేత మధు భార షంద్ త్వ ప్రసాద్
गुणगण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश नेस दिन अनास आजान बाहु साहान साहौ राजान राज पानान पहन देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपहंग गतमित अपार गुणगण उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदूत प्रचंड मित गत आखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वरती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने जाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिसय आदिशय अदृशय अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया शेज दिशय किया भिज पिसय किया गंज कर्म किया भंज परमय किया भिज लोक किया दित सुख किया अवतूत वर्ण के बेपूत करने के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपाओ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रेहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपबुल गुना है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन दह है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसलामे सलीखत मुदामे गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बुलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजू अल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल फरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तो सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचेज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वा प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल छंद त्वा प्रसाद। नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वैभूते प्रमातुं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी दृकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्वा प्रसाद। के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबुल नेवाज है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है। मधुभार शांतत्व प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनुगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अन शेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जाने है सर्वंकर है सर्वंकार है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है पारते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवभंजन है आर्यगंजन है रेपतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ताहार है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद। अजय अलय अपह अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी
ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे आकर्मंग अपहरमंग अगंजे अलेखे पुयंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुकर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हुंते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पलही बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गन है नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब है सो बिचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जिहान निदान चलेंगे वीर अपार बडे बरियार अब चाराय सार की तार पशैया तूरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सोबात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव हनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खापेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादित दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाक फ्रियो लिये सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशाक शीस नेवायो को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तहायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तहायो
ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਉ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਵਿ ਉਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਾਓ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਾਓ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਸ਼ਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤ ਜੋ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਕਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦਾਇਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਾਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਆਸਤ ਫੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹੇ ਧਰ ਸਭ ਹੋਂ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਾਸ਼ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਪਿਹਵ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਓਤ ਭੋਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਜ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਵੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਪਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੋਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਤੁਝ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੋ ਹਵਾਏ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਏ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰੇ ਹੋ, ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵਾਇ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਖੜ ਗੋ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ।

सब खेल तेरा क्या आखू आख वखाणा है आख है ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय इक वेख परसुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज त्रिशना बहुत नाही बोलना खन्यहु तिखी वालहु निकी एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक जाल भगता हां जुग जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिव चलै जिना मार्ग पावहे कर किरपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलावहे एहो सुहिला शब्द सुहावा सबदो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहै जिना उपजै विण सह जाए सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए सह सहजियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा विजाए जियो मैले बारू निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिशना वड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सुसुणै नाही फिरै ज्यों बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया पले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले गुर के चरण हृदय तिहाए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाणै कोई कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुरते वे मुख होवै बिन सतगुर मुकत न पावै पावै मुकत न होर थै कोई पुछहो बबेकियां जाए अनेक जुनी भरम आवै बिन सतगुर मुकत न पाए फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुकत न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पए रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए
कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ। सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यों लेव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततय सार न जाने, ततय सार न जाने गुरु बाजों ततय सार न जाने। तिह गुणे संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहाणी, गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर देव लागै जागत रैन विहाणी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुँचावे। उसनो केहो पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जे ही करता है खेल रचाया। जातिस पाणा ता जमया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी कृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह पुजै भाव दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए, हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बन जा रहा, हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जा रहा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए गुरत किता जिच जिचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बाउड़ ना तृष्णा लागे आए। इहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिसे आए। कहे नानक होर आन रस सब वी सरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जो तरा की ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापय। अनहत

इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद सरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानक ए नेत्र अंद से सतगुर मिले हैं दिव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो सच है सुनने नो पठाए सच है सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो सच है सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुआरे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इतना दसवां द्वार दिखाया कह अनेक रूप नाओ नावने दो तिस दांत न जाई पाया कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रखो कह वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहेला सच कर गावो गावो ता सोहेला कर सच जिथे सदा सच ते आवे सचो ते आवे जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावे एहो सच सबना का खसम है जिस बख से सो जन पावहे कहे नानक सच सोहेला सच्चै कर गावहे।

सगल समगरी तुमर सूत्र तारी तुमते होए सो।

अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते सतगुरु जी आप जी की पावन टहल सेवा करदिया हुई बेअंत भुलां की खिमा कर देनी अगे तो सुमत बख्शिश करनी आप जी के पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहोजे विखे सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे दीवाना दे विच सतगुरु जी संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ उपरंत नितनेम दियां पंज बाणियां दे पाठ होए महाराज जी बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैनी बाणी दा भाव दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना काम क्रोध लोह मोह हंकार तो बचाउणा सिखी सिदक केसा सुवासा संग निभाउणा पातशाह जी दाराइयां संगतां दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां सब दी हाजरी लेखे लाओ सतगुरु जी दरों करो सिखी

0: नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाव, वड्डी वड्याई जा सच ने।

0: कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान
1: कौन पानी बसंतर कुदरत धरती का सब तेरी कुदरतों कादर करता पाक विनाय पाक।

0: त्रेत रथ जतय का जोर गै रथ वाहो, द्वापर तपय का सत गै रथ वाहो, कल युग रथगन का पूर गै रथ वाहो। महला पहला।
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में है।

जित पहु खसम न जाए। नानक सेवक का दिया जैसे ती कसम समय पौड़ी नानक कंतर जा।

ਇੱਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ ਬਿਣ ਬੂਝੇ ਸਭ ਵਾਦ ਜੋਨੀ

ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਣੀ ਜਪ ਲਿਆ ਖੋਜੇ

गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो विसर नहीं दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप

ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ

सत्संग जी बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाचे दस प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण त्यावैसा सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मा स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दरदा तैन तरके खालसा साहब बोलो जी। वाहे गरीब नवाज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाई देख डेढ़ कीता ते ना प्यारे ते प्यारे नी कमाई ते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म ए सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लहाइया चरखड़िया के चढ़े हार नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा से किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु पंजा गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब आए देख देख की फतेह बिंद की पहन पंत की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान क्योंकि चंडे फूंगे जुग जुग टन धर्म कह जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखां दा मन नीवां मत उची मत पत के रखे आप वाहे गुरु गुरु की बनवाज पंथ सदा साहिब जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हें तो आपके पंथ को छोड़िया गया है उन्होंने गुरु दर्शन की दार से सेवा संभाल दिता अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु नाम दार जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी के चन कामना अरदास दार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगतों को दर्शन करते कंठा वर्त उतार दियो बेअंत बाणियों के पाठ अब रागी सिंह ने आप जाना जा सकी वाद कीर्तन कीर्तन विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा त्याग की गरीब भाई कृपा करो भूइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच कर प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे इंसानी कृपाता करो जी अगो तो शुरू से पितर बाणी त्याग बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप दखियां दातों में पत्रकलाब सारी जगह त्याग कर हादत आहार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संकत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज आप दखियां दातों जो नगर तुट सेवा जी प्रवान को दतार जी बख्शिश करो गुरु गरीब नवाज अद जाना सेवा कर रहे सारे प्यारिया सिंह सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चढ़ बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरना सेवा की भावन बखरी पालता करो। गरीब नवाज अमृत वे तो लैके दाती आई सब संगत जी दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगत का दर से तिर पर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा कर दतार आज दर के सेवादार दतार पिता जी भाई गरीब नवाज जी गौरव सिंह मिर्क के पातशाह जी अपने कार्यों की सफलता वास्ते बेनती कर दें गरीब नवाज दास बेनती करने की कृपा करो मेरे प्रयास अपने सेवकों से रखो अपने सेवकों के सारे कार्यता सहित पूर्ण करो अपने सेवकों की आप राजमा रखो सचे पातशाह भाई कमलजीत सिंह दिल्ली वाले देर उसे अरदास बेनती करने की कृपा सचे पातशाह जी अरदासा बेनती चरण प्रवान करो भाई कमलजीत सिंह दिल्ली वाले देर उस अरदास बेनती करके चाली कार वालता करो गुरु जी नवाज बख्शी करो सचे पातशाह जी मेहनत करो खास संबंध एक तरफ भाग प्यार की बख्शिश करके सत रोज दाल बख्शो चैनल जुड़ो गुरुवाणी का प्यार बख्शी कर देता हार हर मैदान दुआन फतेह बख्शा बात करो जी सबसे पातशाह जी हो दूध लाए कर बैठी लाइव कथा की श्रवण कर रही है सारी संगत हाजिर करो घड़िया लेके लाओ रब ने कृपा की संगत बख्शे
ਸੰਗਤ ਆਦਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਚਾ ਸਭ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਕਾਜ ਵੱਧ ਵਧਦਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਿਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੇਦ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸ ਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਵਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਰ, ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ।

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਏ ਸੁਣਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ

हुक्मे कढ़दा साहा हे। गुरमुख साचै किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बुझै, शब्द सच्चै सुख ताहा हे। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुर

गुरमुख उपजै साच समावै, ना मर जम्मै ना जूनी पावै, गुरमुख सदा रह

वेद पढ़ है पढ़वा बाद बखान है, वेद पढ़ है पढ़ बाद बखान है, घट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछ।

गुरमुख सच संयम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, भाई भगत सदा रंग राता।

गुरमुख हुआ सो सुख कमाए, मरण जीवन की सोजी पाए। मरण जीवन

सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे, बिन सतगुर भेटे ठौर न पावे, आपे खेल कराएं दा आप अपर

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ।

तुम ही जान दास सदा कुर्बानी। सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिक दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लईते आए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कर्ण अनुदावता है सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्म स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर दरते अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहेगुरु प्रभात आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां चपियां तपियां जिन्हें नाम चपिया वन चपिया देख चलाई ते वाहे देख झटकी चतना प्यारे से प्यारे की कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी। वाहेगुरु सिंगा सिंगनिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया चरखियों चढ़े आ रहे चढ़ाए गए गुरदे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी दिखे संसा संसंग दवाया तिना ही कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्तां गुरुद्वारे दस्या अंदर की बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम किताब है चित आवण का सदका सब सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब करते रहाय देख देख की फतेह मृत की पहल पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाल ने बोलो जी। वाहेगुरु गुरु महाराज बोलो वाहेगुरु जिन्हें सिंघा सिंगड़ियां तरवे सी दिते बंद बंद करो गरीब सचे पाचार्यो मेहर करो दतार सिखा खालसा पंथ नूं एक तत्व प्याजी बख्शिश करो सचे पाचार्यो तन दतार में सिखा नूं सिक्खी दान केह दान रहस दान वेग दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान क्योंकि चंदे बूंगे जुग जुग हटान धर्म क्या जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा का मन ही मैं मत जी मत पत के रख के आप वाहेगुरु गुरु जी गुरु आज पंथ सदा चाहिए दया जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हें तो आप जी पंथ में छोड़ है सरदार सेवा समाधा दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे ओटिया दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु दार पिता जी हो समूह संगत लाल चनका जगदान दार पिता जी हो सचे पातशाह जी आप जी के पहले प्रकाश गुरु दी खुशियां दार जी आप जी चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा कर दार पिता जी हो समूह संगत वालों कमेटी वालों छिपा प्रबंधकों वालों सेवादार वालों तार पिता जी आदि चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं पत्रकार गुरु जी मतार सहज पाठ प्रारंभ करवा रहे हैं सहज पाठ आरंभ हो रहे हैं ऐस में बख्श करो मेर पर्याप्तार जी सारिया संगत प्रबंधक स्वरण सेवत रखो अपने सेवकों के सारे कार्य विघता सहज बूट करने की वार्ता करनी गुरुराज पाठी संघा सेवादार शोध से पुत्र बाणी विचारने बल बुद्धि बख्शिश करने की कृपा करते पाचेरियो इन्होंने खुशियां आप दिन बख्शिया दाता पुत्र ग्राम सहज जगह तैयार कर दता आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सत्संग की रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शे करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शे करो जी सच्चे पातशाह जी मेहर करो दतार जी कृपा करो खास संबंध में सिख कौम एकता दवाग प्यार की बख्शे करके सन दाल बख्शो चरना जुड़क मणि का प्यार बख्शे करो राग ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह बख्शे करो तू खास संबंध में चरना जुड़क मणि का प्यार बख्शी दतार अपने चरणों की सेवा की भावना बख्शी कर लो सदा भावना बख्श करो दतार आने वाले समय जिस तरह गरीब महाराज सारे पुरबान में चढ़ कर नौ देने वास्तव दाल बख्श करनी भावना की दाल बख्श करो सेवा की दाल कृपा दतार जी मेहर करो सेवा प्रवान करो उन्हें चुका माही बख्शो पैदर गुमनामी बख्शी करके बरा वीरवा लड़ीवा सहज प्रारंभ करने वास्ते आग्या बख्शो अब मेरे पर ऐसे रखार विण बोलिया सब के जाना कि सहकता बख्शा करो मेरा कर दार दिता जी सही प्यारे मेरे दिल मेरा आपका नाम चार नानक नाम कर दी कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल के तवी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल भोज है खोज जबद मह राज करेगा खालसा आकी रहे ना को पार होए सा मिलेंगे बजे शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पा जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है सी
सोहा बड़ी रचया करे गुरु कर गी तारी जगदीश बोले सुनहार सत्रियाकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

साहब वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साहब संगत जी, वडभागी हो जो गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है, जो समूह संगतां नूं प्रेरणा ते उद्यम बख्शिश कीता है। साहिब सतगुरु धन धुन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे आ रहे पहले प्रकाश पुरब के संबंध अंदर जो समूह संगतां वल्लों श्रद्धा भावना प्यार सहित श्री सहज पाठ प्रारंभ हुए हन, गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने सेवा करनी है, सतगुरु कृपा करे सबना दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे, दे अरोगता की दात बख्शिश करके आप बाणी नूं शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न रूप दी सुनन दी सतगुरु जी आप रहमत करन दी। समूह संगतां दा धन्नवाद, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अंत न करना, अंत न वेखण।

ਕਰਮ ਸਵੈ ਕੱਠ ਖਾਈ ਉੱਥੇ।

ਨਾਨਕ ਅੰਤ।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई।

0: cominciato, no? Di cresciare.
1: Non è potrebbe essere.

अचत राज विचलित सुख दुख पाया सोगत पई हमारी राज प्रियांग प्रसंग जैसे है अब कच मर्म।

नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम कथा पुरख निरपौ निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैपं गुरप्रसाद जापो आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच जे जुग चारे हर जा होद सुनी होए नवा कंडा बिच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और काय कह जस कीत जगले जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवत्या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुन ऐ सिद्ध पीर सुरनाथ सुन ऐ सरत तवल आकाश सुन ऐ दीप लो आकाल सुनया पोहे न सके काल नानक भगत सदा विगास सुनै दू पाप का नाश सुनै ईश्वर वर्मा इंद सुनै मुख सारा हनुमंद सुनै जोग जुगतन भेद सुनै शास्त सिमृत वेद नानक भगत सदा विगास सुनै दू पाप का नाश सुनै सत्संग सोग ज्ञान सुनै अठसर का स्नान सुनै पट पट पावे मान सुनै लागे सहज ध्यान नानक भगत सदा विगास सुनै धूप पाप का नाश सुनै सरा गुणा की गाह सुनै सिख पीठ पात साह सुनै अंधे पावे राह सुनै हाथ व्यस गाह नानक भगत सदा विगास सुनै धूप पाप का नाश मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागज कर्म लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बोध मन्ने सकल भवन की सोध मन्ने मोहे चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मारन ढाक ना पाए मन्ने पस्यो परगड़ जाए मन्ने मगना चले पांत मन्ने धर्म स्थिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावे मोग द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे ना पेख ऐसा नाम निरंजन कोए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंची पावे दरगे मान पंची सोह है दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान।

जुको बुझ होवे सच्यार तबले ऊपर कीता पार धरती होर पराय होर होर तिसे पार चलय कवन जोर जीए जात रंगा के नाव सबना लिखा बुरी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखा किसा होए किसा तान सवालियो रूप किसी दाद जाने कौन तूत किसा पसाओ एक कवाओ तिसे होए लग दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार बारा न जावा एक बार ज्योत पावे साई परिकार तू सदा सलाम निरंकार संग जप संग पाओ संग पूजा संग तपाओ संग ग्रंथ मुख भेद प्राण पाठ संग ग्रंथ मुख भेद पाठ संग जोग मन रह है उदास संग भग गुण ज्ञान विचार संग सती संग दातार संग सूर मोह पक्षार संग मोहन लिबलाए तार कुसित कवन का विचार बार न जावा एक बार ज्योतिष भावे सही परिकार तू सदा सलामत निरंकार संग मूर्ख अंध कोर संग चोर हराम खोर संग अमर कर जाहे जोर संग गलबट त्या कमाए संग पापी पाप कर जाहे संग कुरियार कुरी फिराहे संग मलेश मल पखाहे संग निंदक सिर करे भार नारक नीच कहे विचार बार न जावा एक बार ज्योत भावे साई फलिकार तू सदा सलामत निरंकार संक नाव असंक ताव अगम अगम संग लोव संग कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान दी तुन गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिरसन चो बखान जिन एह लिखे तिसरनाहे जिप फुरमाए तिप पाहे जिता कीता तेता नाओ नावे नाही को साओ कुदरत कमल कहा विचार बार न जावा एक बार जो सुध भावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार परिया है हाथ पैर तन देह पानी सोता है उसर सखेह मुत पलीसी कपड़ होए ते साबुन लिए ओहो धोए परिया है मत पापा कह संग ओहो तो पह नावे कै रंग पुनी पापी आखड़ना है कर करना।

गोबद प्रगट हो वैसा लोक राके पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ।

जिसके जी प्राण है मन बसया सुख होए, जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, सो जोगी मिल एक सेव जोगी उठ जाए, जो

कृता निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच न हो गई

chao, esto es about this.

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वढ़ कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच माल पाए असंत मलिंद

ਕਮਲ ਸੁਵੇਲਾ ਭਗਤ ਕਮਲ।

மோல்ல

गावे पंडित परम लखीसर दूध वेदा नाले गावे मौनी अमन मोहन सुरगा मत से आले गावन रतन पाए तेरे अब तीरथ नाले गावे दूर महापुरुष

है संसार दूसरा जो कर देखे सोए नानक कुटुम रत्ती रुती थी का पौन पानी अभी पाता विश्वित धरती थाप थी धर्म करके नाम कर्मी कर्मी होए विचार इतने सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म प्रवे कच्छ खाई उथे पाए नानक गया धर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते काम में किते परमे का करिए विवरण में

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिर अशांत मलेच मल पाखाए अशांत निंदक करे नानक नीच कहे क्या मारे अन जाम के जो तुम पावे सही फलिका।

सबुर तेरे सुनाई होए गणपुर की जय स्वस्थ आस्थाई ब्रह्मा सत्वाम सलाम।

ਅੰਤ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ।

amol karam amol divan amol amol amol.

ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰ।

ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਪਰਮ ਰਖੀ ਸੰਤ।

ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰਤਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच ना।

संत सूर मोह मत चाह।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार करे सदाए अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक

ਕਮਲ ਸੁਰੇਲਾ ਭਗਤ ਕਮਲ ਕਮਲ।

अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

सोहन मन प्रवान नदरी कर्म सोवे ने कथ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का।

ਮਨ ਉਦਤ ਠੈਕਰੀਏ ਸੁਰਾ ਸੁਰਤ।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार करे सुधाए अशांत मलेच्छ मल पाए अशांत निंदा।

ਕਮਲ ਸੁਨੈਲਾ ਭਗਤ ਕਮਲ ਕਮਲ।

सुदर तेरा सो करके गा।

কাছে নান খুশি সচে সোচ না হবই

संस्वाओ संस्या संस्थाओ संस्करण देवा संस्योग मन रहेगा संस्वाद ज्ञान विचार संस्कृति का संस्कार संस्कृति

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख बल बढ़ शंख पापी पाप अशंख मूरे अशंख मलेश मर पाप है अशंख निंदक करें पाप नानक नींद कह मारे न जाना के जो तुझ पाप है सही परिकार सदा सुना संत नाम संत नाम गम गम संत दो।

ਪੰਡ

0: पे जाए ए साला जी साला है नदियां के बाहर सोम न जान समुद्र सा करता गिरी पुल नौमणी
1: अंत न सुखी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

ਨਾਨਕ ਅੰਗ।

मात्र मन रोधक है करिए सुरा सुरा कर्म खंड की पानी जो है।

भूमि शैलम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशंख मूर्खंड घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करे फिराए अशंख मलेश मल पाए अशंख निंदक करें पा नानक नीच कहें क्या

अंत न सुनी कह नान अंत न करना मेरे नान अंत न देखना।

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच ना।

हर तरह क्यों जो जी जा गंगा के ना सब नाल क्या मुड़ी सब एवले नाल के जाने होए ये तार सुना।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल हत्या कमाए संख पापी पाप असंख कूड़े यार करे बुराए संख मलेच मार पाक खाए असंख निंदक करे पाप नानक नीच कहे विचार मारे न जाना जो तुम पावे।

ਪਾਈਆ।

बोल बिगाड़ लिखे फिर गवारा गवारा सोदर तेरा सो करके सर्व

ਨਾਨਕ ਅੰਤ।

तत् निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

संत सूर

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत नूर यार करे सुनाए संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जावा दे जो तुझ पावे सही परिकार सदा सुना संत नाम संत नाम राम राम संत

आपे पीर आपे खा ਕਮਣ ਸੁਵੇਂਦਾ ਭਗਤ ਕਮਣ।

ਖਾਲਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ

सोदर तेरा सो करके रा

ಚಂದ್ರಿ ಮೈ

ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਤੂੰ ਕਿਤੀਆਂ ਸੁਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कलवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे अशांत मलेच माल पाए अशांत निंद

ਕਮਲ ਸੁਵੇਂਦਾ ਭਗਤ ਕਮਲ।

ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ।

ਖੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਉਦਤ ਹੈ ਕਰੀਏ ਸੁਰਾ ਸੁਰਤ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਤ।

निरतप निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगा।

ఫోన్ కాల్లో

ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು

ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ

ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಹೊರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂಚೆ

ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਇਹ

ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ

ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ

ਸਤਿ

संतों का दुख

Dr. Phil Galen.

ਮਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਤਰ ਲੋਕ

ਸਾਧੇ ਸੂਰ ਨਾਮ ਸੂਈ ਸੂਰ

ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਕਾਨਾ ਆਤਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਏ ਕਾਨਾ

Makaya

Satsang with Mooji.

Şahsa Sözü'nün

ਮੰਗਣਾ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ

Thank you.

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

और गांव का मुंह कहा के

ਬਾਬਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮਹਿ ਤੇ ਤੁਮਾਰੀ ਇਤਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ।

ಸಾಧುವತ್ನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಮೇ ಜೋ

ਆਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

मंदिर विश्व है।

Yeah.

to move

शरण गुरु प्रसाद। जब आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक खुशी सत। सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए शांत पापी पाप अशांत मूर यार मरे फिर अशांत मलेश मल पाए अशांत निंदक।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਣ ਸੁਵੇਗਾ ਭਗਤ ਕਾ